0: in Gujarat has spent decades mastering one thing, turning rough stones into some of the world's most sought-after diamonds. But the ambition today is much bigger, to manufacture, trade, design, and eventually take more of that value to the global consumer. As Prime Minister Narendra Modi completes 25 years in public life this October, we look at the transformation of Gujarat's diamond ecosystem from family-run workshops to a global trading hub.
1: In 1972, Vallabhbhai Borda began learning the diamond trade. 15 years later, in 1987, he started his own business setup with two family members and just three employees. Today, along with his son, that business has grown to more than 4,000 people across Gujarat. This is the story of Anjali Diam, a natural diamond manufacturing company that has grown with Surat's diamond industry.
2: जब हमने स्टार्ट किया था तब हम दो तो हम खुद थे, एक मैं और एक मेरा भतीजा परेश थे, और तीन कारीगर गांव में से मिल गए. हमने गांव में से फैक्ट्री स्टार्ट की थी, तो हम दो से तीन मिल गया, बोले पांच मिल के फैक्ट्री चल जाएगी. उस टाइम वर्कर की बहुत कमी थी, डायमंड वर्कर को अच्छा रिस्पेक्ट देते थे सब, और उसको एडवांस में पैसा देना पड़ता था. उस टाइम पहले इन्वेस्ट वर्कर में करना पड़ता था, टेक्नोलॉजी नहीं थी तो प्रोडक्शन बहुत कम आते थे. फिर धीरे धीरे पहले देसी घंटी थी, फिर सेमी घंटी आई, ऑटोमेटिक घंटी आई, तो फिर डायमंड स्केप शरण आई, तो उसका प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ गया पहले से. टेक्नोलॉजी के बिना ही धंधा चल नहीं सकता, कंप्यूटराइज सब हो गया. अगर पुराने तरीके से धंधा करने जाओ तो कोई कर ही नहीं सकेगा, कल्पना भी नहीं कर सकेगा अभी तो.
1: Today, the company has grown by leaps and bounds. Surat in Gujarat cuts and polishes about 90% of all rough diamonds in the world by volume. An industry compendium associated with the Surat Diamond Bourse puts the city's diamond ecosystem at nearly 7 lakh people and more than 6,000 units. At Anjali Diam alone, the company estimates around 35,000 rough diamonds are cut and polished every day. But as the industry has grown, so have consumer expectations.
3: Previously, in the previous generation, the buyers, they were just interested in knowing what is the color clarity or the size, and they were only interested in knowing the value of the diamonds. But the newer generation, they want to know everything. They want to know where did this diamond come from, which mines. They want to know the policies of the diamonds. They also want to know the policy of ours, how, what are our social commitments, what corporate social responsibilities we are doing. We are doing everything responsibility or not. They want to know everything. If we are doing anything, if we are harming the environment or we are doing something to protect the environment or not.
1: The industry's biggest shift has been technological. Advanced diamond planning, laser cutting and automation have made the process faster and more precise. And this change has unfolded alongside Gujarat's broader economic expansion.
4: Last 25 saal ke andar jo changes hua hai, wo zyada se zyada technology mein hua. 25 साल पहले ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो एक पूरे सूरत के अंदर कटिंग पॉलिशिंग हो रहा था. नए नए लोग माइग्रेट होकर सूरत आ रहे थे और डायमंड इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही थी. 25 साल के बाद जैसे टेक्नोलॉजी अडॉप्शन सूरत ने पहले किया, जो वर्ल्ड के इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है, कटिंग पॉलिशिंग, डायमंड प्लानिंग वगैरह, लेजर टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी से डायमंड इंडस्ट्रीज को एक बूस्ट मिला है. और जब से नरेंद्र मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम से बहुत सारा गुजरात के अंदर चेंजेस आए. उसने डिसीजन बहुत बोल्ड डिसीजन लिया.

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल
1: स्मॉल.
2: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग. अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल
1: स्मॉल
2: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग,
1: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग.
2: अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल
1: स्मॉल,
2: आप पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग,
3: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग,
2: ब्रांच नेटवर्क बिग।
4: अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता।
5: और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
6: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
0: Maddie, I need to open a savings account.
1: Arey, Ujjivan Small Finance Bank ma kholo.
0: Small bank?
1: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business edge current account. Business, Maxima business privilege, RDF. There's nothing small about them.
0: Okay.
5: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
4: द वर्ल्ड इज चेंजिंग द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे From around the continents, Asia and India, WeOn brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WeOn. World is one.
5: Maddie, I need to open a savings account.
1: Arey, Ujjivan Small Finance Bank ma kholo.
5: Small bank?
1: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
5: Okay.
3: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: यार लोन भूल गया मैरी
1: जस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
3: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
4: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
5: द वर्ल्ड इज चेंजिंग द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
6: Maddie, I need to open a savings account.
2: Arey, Ujjivan Small Finance Bank ma kholo.
6: Small bank?
2: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
6: Okay.
4: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: Well, let's go over to where Prime Minister Narendra Modi is right now speaking to Amit Machar, the pilot of Fly Dubai plane.
1: जान बचाने वाले लोग सर आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं। अब मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला, गीता बहन से बात की, सोनल बहन से बात की, जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मिथ को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया। स्मिथ, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
2: सर, मेरे लिए

0: मैं सरस्वती भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्टर से पीछे और आपने से कॉल करके मेरी मजा कर रहे, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। मैं उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे। एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं 17 साल से जहाज उड़ा रहा हूं, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूं और मुझे पता चलता है आंख बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सोचा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मिथ कर ले दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल लिया सर, बाकी सब आ गए और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था। मैं जान के मैं सबको बोल रहा था कि मैं अपने जान के हिसाब से कर रहा था, एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मत नहीं सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सावधी में भी या मुक्त पल के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था। एंड मैं सर मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में मैं जब भी मेरे को दर्द होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था, अब मुझे पता है कि वो भगवान नहीं मेरे को बचाए। बस आपका एक कॉल आ गया मैं तो बहुत बहुत गर्व होता है, अब भी मैं तो हो रहा है मेरे पे गर्व, अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर। सॉरी क्या आपके सामने रो रहा हूँ सर।
1: स्मित अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे।
0: तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
1: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी आज दुनिया के लोग भी आपको देखने आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए, भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा पूर्ण। और मैं आपको बताऊं उसमें कम मेरी जब सोनम बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
0: सर मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ मेरा 2 साल का बेटा मेरे गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
1: सही बात।
0: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर हैं, ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
1: आपको पता नहीं होगा लोग सावर कुंडला में भी वढ़वान में भी सब दो एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं, भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। आप शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूं, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने।
0: नहीं सर मैं उस गांव को गांव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं उसको एक

0: Now, Prime Minister Narendra Modi spoke to Indian pilot captain Smit Matar over a video call, and the Prime Minister praised his courage, presence of mind and composure during the mid-air attack. Now, the Prime Minister told Smit that the entire country was praying for his recovery. Now, Smit, currently recovering at a hospital in Abu Dhabi, also recalled what happened in the cockpit during the attack and gave him the courage. And what gave him the courage? Now, we leave you with a call, a talk there. The news and updates will follow on the other side. You're watching Beyond World News 1. Do stay tuned.
1: Smit, namaste.
2: Namaste, sir.
1: कैसे हो अभी? तबीयत कैसी है?
2: सर, सब ठीक है, सर, सब ठीक
1: है. देखिए, पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है. महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं. आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई. और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं. और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की.

0: और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता। कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला, गीता बहन से बात की, सोनल बहन से बात की, जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मिथ को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया। स्मिथ, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
1: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एडवाइजर हैं और आप मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। मैं उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे, एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा मैं एंजर में 17 साल से ज्यादा दौड़ा था, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूं और मुझे पता चलता है आंख बंद करके भी कि चार्ज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मिथ कर ले दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आ गए और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था। मैं जान के मैं सर को बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मत दे सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सावधानी में भी यहाँ पे तो बन के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था। एंड मैं सर मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में मैं जब भी मेरे को डर होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था और मुझे पता है कि वो भगवान ही मेरे को बचाए। बस आपका एक कॉल आ गया मुझे तो बहुत बहुत गर्व होता है। अब भी मेरे को हो रहा है, मेरे पे गर्व अब तक नहीं हो रहा था। अब हो गया सर, सॉरी कि आपके सामने रो रहा हूं सर।
0: स्मिथ, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे।
1: सर ये मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
0: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी, आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए। भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा पूर्ण। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोनल बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
1: सर मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरे गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
0: सही बात है।
1: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर है, ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
0: आपको पता नहीं होगा लोग सावर कुमला में भी, वढ़वान में भी,

0: अब दो एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। आप शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूं, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने।
1: नहीं सर, मैं उस घाव को घाव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं उसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है, एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
0: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूँ। स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूँ। लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, यानी बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे। और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए और आप बिल्कुल, पूरा देश आपके साथ है। मैं ज्यादा आपको परेशान करना नहीं चाहता हूं। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आज गांधी जयंती है, अहिंसा क्या होती है वो आपने जी करके दिखाया। चलिए जय श्री कृष्ण। मैं थोड़ी गुजराती में बात कर ली बॉबी, अरे जेवा गुजराती बोले थे नहीं बोलता बेवजाय गुजराती बोले थे તો બાળકો મળવાનું થઈ ગયું, બાળકોને ડોક્ટરો એલાવ કર્યા મળવા માટે?
1: મારી મોટી દીકરી આવી હતી પણ આવું બધું જોઈ નહીં કરી કે
0: અચ્છા અચ્છા,
1: એ થોડી મારાથી બહુ ક્લોઝ છે અને મારા નાના સન 2 વર્ષ પછી એને નથી એલાવ કર્યા.

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन. स्मॉल
1: स्मॉल.
2: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग.
3: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग.
2: ब्रांच नेटवर्क बिग.
4: अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता.
5: Jeevan, nothing small about us.
6: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WeOn brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WeOn, world is one.
7: यार लोन भूल गया मैडी.
8: सजेस्ट अ गुड बैंक ना.
9: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक.
8: स्मॉल फाइनेंस बैंक.
9: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन.
10: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
5: अस. उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल
1: स्मॉल
2: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग,
1: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग,
2: ब्रांच नेटवर्क
1: बिग.
2: अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता. जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
3: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
4: यार लोन भूल गया मैरी.
5: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना.
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक.
4: स्मॉल फाइनेंस बैंक.
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन.
6: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
2: इट. उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: why this happened. And until we get some real hard evidence, I'm afraid we're just going to have to be cautious about coming to any firm conclusions about what happened, what caused it, and what will happen next.
1: Right, Mr. Dole, and that's very interesting because, of course, we are waiting. We're saying that these are allegations, these are claims. But Israel seems to be acting as if they know. What could be the reason? Do they actually know?
0: Well, I'd be pretty cautious about an Israeli prime minister who himself doesn't have a strong record on the issue of truth. And if you actually listen to him, he actually sort of said, these are the indications that we have at this point, leaving him, and indeed, listen to what President Trump said, plenty of wriggle room to say, actually now, the information that we are hearing and getting says something different. So, of course, you know, President Trump might have a motivation to look at Iran, as might Israel, but one shouldn't exclude all sorts of other possibilities, including it, that this man was a lone actor who took matters into his own hands. I mean, all of that in the investigation, I mean, they'll be looking as to, you know, how this man became a co-pilot, in what way did he not get vetted beforehand, you know, what happened there. But of course, as a co-pilot, he would have had access to the plane. It wouldn't, I'm going to speculate here, which is dangerous, that he wouldn't have needed a tremendous amount of assistance in order to do what he was doing. I think you can perhaps take one or two conclusions here. I guess is reasonable. I mean, given that nearly all the passengers were Israeli, that there is an Israeli angle to the motivation of the attack. I think that's probably a reasonable conclusion. I think there were four Americans on it. But beyond that, I think one has to be cautious.
1: Now, of course, other claims then, of course, the nationality. Netanyahu has said that, I'm quoting him here, that here with the co-pilot in Abu Dhabi, Israel can now join the UAE's investigation team and get precise knowledge of what his motives were. Is Israel allowed to take part in this investigation?
0: Well, that's a matter for the two states. If the UAE wanted to, it could exclude Israel from it, but it's not going to. They have, since the Abraham Accords, since normalization, particularly close ties. So I suspect there's going to be, you know, a very strong cooperation. And the Emiratis will probably welcome some of the technical input that the Israeli side will have to bring on this. I think, though, that if we are going to ensure that we tamp down on those conspiracies and that climate of speculation, that they need to be very disciplined in how they give out information in the public domain, and that it has to be transparent and comprehensive, so that this is not an investigation that is under wraps, where they're hiding things from the public, because I think there is a lot of interest. Of course, the very serious part of this going forward is to determine, you know, is this a lone attack, therefore it's a one-off, or is this something that could be repeated? Is this something that a state sponsor or a non-state actor might wish to do again? What were the flaws in the security arrangements? Because other states will be looking at this, other airlines, other airports. They will want to know exactly what went on to ensure that their security arrangements are tightened, particularly, of course, in terms of, you know, what goes on within the cockpit.
1: Right. Now, Israeli officials have alleged a jihadist or Islamist motive there, because you mentioned that. Of course, you've also mentioned that in your answer. Netanyahu has said that the co-pilot he underwent what he described as radical Islamist indoctrination. And these are just claims as of now. But again, you know, how do you see, you know, these allegations coming in, or claims rather, from the Israeli prime minister?
0: Well, I think yet again, let's keep things, you know, calm here. I think we would possibly have seen other indications if he was a radical Islamist jihadi of a more extreme variety? Let's say that if the co-pilot had belonged to a well-established group, for example, like Al-Qaeda, that there would have been some claim of responsibility. As far as I'm aware, correct me if I'm wrong, there hasn't been as yet. So I think, you know, one has to be careful. Also, I think what Netanyahu might describe as a radical jihadist indoctrination might not be quite the same as others might understand it. Yet again, he has a motivation in perhaps hyping that element of this. I think we need to wait for, you know, those details, the proper background as to who this person was, the identity when that is appropriate to be revealed, all the rest of it. The person could have been quite secular, angered by what's going on, could have been motivated by nationalist instincts, could have been motivated by all sorts of other reasons. We need to have hard facts.
1: Right. And it's interesting how we don't have the name yet, if there could be a reason why we don't know the person's name of the pilot. Normally, it's even announced even before the flight takes off. It's the pilots who actually announce who's, you know, captaining the plane. But of course, we'll have to wait and wait for the evidence, wait for the claims to actually be proven to see what happens. Thank you so much, Mr. Doyle, for joining us on the broadcast. Appreciate it very much.
0: Thank you so much for having me.
1: Prime Minister Narendra Modi spoke to the Indian pilot captain Smit Natar over a video call. Now, the Prime Minister praised his courage, presence of mind, and composure during the mid-air attack. The Prime Minister told Smit that the entire country was praying for his recovery. Now, Smit is currently recovering at the hospital in Abu Dhabi and also recalled what happened in the cockpit during the attack and gave him the courage. Now, let's listen into the call. We leave you with this talk there. Using Abdi Swill, follow on the other side. You're watching We On What Is Fun.
2: Smit, namaste.
3: Namaste, sir.
2: कैसे हो अभी तबीयत कैसी है
3: सर सब ठीक है सर सब ठीक है
2: देखिए पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है
4: महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं आपकी हिम्मत ने आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं जान बचाने वाले लोग हैं और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला गीता बहन से बात की सोनल बहन से बात की जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मित को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया स्मित अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा
3: सर मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था आप मेरे सबसे बड़े एक्टर से और आप मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है मैं उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इसने कहा लग चुकी थी कि मैं गिर चुका था नीचे। उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एंजर में 17 साल से ज्यादा दौड़ा था, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है आंख बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मिथ कर ले दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल लिया सर बाकी सब आ गए और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था। मैं जान के मैं सबको बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मत दे सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सऊदी में भी या पुख्तपन के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था। एंड मैं एक सिर्फ पॉजिटिव है कि मैं जब भी मेरे को डांस होता है मुझे एक चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था और मुझे पता है कि वो भगवान नहीं मेरे को बचाए। बस आपका एक कॉल आ गया मैं तो बहुत बहुत गर्व होता है, अब भी मैं तो हो रहा है मेरे पे गर्व, अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर। सॉरी क्या आपके सामने रो रहा हूँ सर।
2: स्मित अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे।
3: चलिए मैंने कभी नहीं सोचा था भी मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
2: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी आज दुनिया के लोग भी आपको देखने आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए, भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा। और मैं आपको बताऊं उसमें कम मेरी जब सोलन बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
3: सर मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ मेरा 2 साल का बेटा मुझे गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
2: सही बात।
3: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर है, ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
2: आपको पता नहीं होगा लोग सावर कुंडला में भी वढ़वान में भी सब जो एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। आप शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूं, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने।
3: नहीं सर मैं उस गांव को गांव की तरह नहीं सोच रहा हूँ बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं उसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
2: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं तो उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूं। स्मित आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूं,
4: लेकिन आप आपने सच में

में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, यानी बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे, और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए और आप बिल्कुल पूरा देश आपके साथ है। मैं ज्यादा आपको परेशान करना नहीं चाहता हूं, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं है। आज गांधी जयंती है, अहिंसा क्या होती है वो आपने जीकर के दिखाया है।

0: including whether colleagues or security authorities had raised concerns about the co-pilot and whether those concerns were acted upon. For now, the central questions remain unanswered. Why did the attack happen? Was it premeditated? Was it ideologically motivated? And did he act alone?
1: Just wait.
2: Okay. But the knife, maybe it's here. The knife, no.
3: Listen. Now we are already on the ground.
1: So, coming.
2: Where is the police?
0: Captain Smit Machar, the Indian pilot seriously injured during a mid-air incident on a flight-by-flight, is recovering well. He was in command of a flight from Dubai to Tel Aviv on Wednesday when he was reportedly attacked by the co-pilot. He fought back to retain control of the flight and managed to open the cockpit door despite being injured. Other crew and passengers then entered the flight deck and overpowered the attacker. Indian Prime Minister, by telephone, spoke to the captain. He praised his bravery and wished him a swift recovery, saying that his actions have made the whole country proud.
4: देखिए पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है
5: महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं आपकी हिम्मत ने आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग।
0: During the call, the captain gave an account of what happened in the cockpit and kept him going on despite being severely injured.
6: आपने सबसे बड़े एक्टर से पीछे और आपने कौन से कॉल करके मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है मैं उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था मैं एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं गिर चुका था मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा मैं एंजर में 17 साल से ज्यादा उड़ा था मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूं और मुझे पता चलता है आंख बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मित कर दे दरवाजा बस वही है और तभी भी मैं मार खा ही रहा था बस वो खोल लिया सर बाकी सब आ गए और बाकी सबकी भी उतनी उसमें रोल था बट जान के मैं सबको बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मत दे सकता
0: Well, the captain was taken to hospital in Tabuk and later to the UAE. He's currently recovering at a hospital in Abu Dhabi. India's ambassador to the UAE also met the captain and his family in the UAE. He said that the pilot is in stable condition and recovering well. Mittal said Machar was smiling, laughing and chatting despite some discomfort and receiving good medical care. Russian President Putin has praised Prime Minister Narendra Modi's ideas to end the war in Ukraine. Putin said Modi has good ideas for finding a peaceful and mutually acceptable solution. He also said Russia sees very big potential for economic cooperation with India beyond logistics. Speaking at the Valdai Forum event in Moscow, the Russian leader said the Prime Minister of India has

0: Maddie, I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, there's nothing small about them.
0: Okay.
1: Ujjivan, nothing small about us.
2: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. We on. World is one.
3: यार लोन भूल गया मैडी.
4: जस्ट अ गुड बैंक ना.
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक.
3: स्मॉल फाइनेंस बैंक.
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन.
5: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
1: अस. उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस. Yeah.

0: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक,
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडी, एवरीथिंग. देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग, द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
3: Yaar, loan bhool gaya. Maddie, suggest a good bank, na?
1: Ujjivan Small Finance Bank.
3: Small Finance Bank?
1: Small. Working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
4: There's nothing small about it.
1: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: Okay.
1: Oh, Jeevan, nothing small about us.
2: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia, and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
3: यार लोन भूल गया मैरी
4: जस्ट अ गुड बैंक ना
1: वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
4: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
5: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
0: अस ओ जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस Yeah.

0: Maddie, I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business edge current account, business, maxima business privilege RDM. There's nothing small about them.
0: Okay.
1: Ujjivan, nothing small about us.
2: The world is changing. The headlines are shifting. The future is being written every day. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. We on. World is one.
0: Guys, mera teesra store. Ab expansion ke liye na ek bank chahiye. Any suggestions? Ujjivan small finance bank. Small?
1: Small? Ab puri picture dekh lo. Loan options? Big. Savings or FDP interest? Big. Branch network? Big. अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता. उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
3: व्हाट इफ पैकमैन वाजंट ऑन अ स्क्रीन एनीमोर बट रनिंग अराउंड द रूम विद यू. दैट इज द आइडिया बिहाइंड अ न्यू गेमिंग वेन्यू इन लंदन वेयर क्लासिक आर्केड गेम्स आर बीइंग टर्न्ड इनटू फिजिकल इमर्सिव एक्सपीरियंसेस. एट आर्केड अरेना प्लेयर्स कैन रन थ्रू अ जायंट पैकमैन मेज, रेस इलेक्ट्रिक कार्ट्स ऑन अ प्रोजेक्टेड ट्रैक and even take on an alien invasion. The Pac-Man Live experience takes the rules of the original arcade game and drops them into a room-sized maze. Up to 10 players can take part at once, running around the projected arena as their own Pac-Man characters.
4: Yeah!

0: Behind me is the iconic textile market of Surat, where millions of meters of fabric change hands every day. But this market is also a window into how Surat's textile industry has transformed over the last 25 years. From traditional power looms to technology, digital trade and global ambitions, let's take a look at the story of Surat's textile evolution.
1: This is Surat, an industrial city in the state of Gujarat. Known as the synthetic textile capital of India, Surat has, over the years, embraced modern technologies to produce world-class textiles on a large scale. The synthetic textile industry in Surat is built on an extraordinary scale. The city has around 30,000 weaving units, more than 1,000 dyeing and printing units, and nearly 200 wholesale markets. Around 95% of these businesses are driven by small and medium enterprises, or SMEs, with thousands of factories producing textiles. It also accounts for roughly 65% of India's man-made fiber textile segment and around 90% of the country's synthetic yarn production. Across this vast ecosystem, an estimated 16 lakh people depend directly or indirectly on textiles for their livelihoods. The real picture of this transformation can be found in one family business. For 45 years, Ravi Sahani has run his shop at Millennium Market. He's accustomed to keeping his records the old-fashioned way, in books. But sitting beside him is his next generation, son Akshay, who has brought in computers, social media and digital business to help modernize the shop.
2: आ गए तब से हमारे लिए मतलब पहले चेक काटते थे बैंक में भरने जाते थे एक स्टाफ का टाइम पास होता था अभी क्या है आरटीजीएस करते हैं एक हमारा स्टाफ कम हो गया और दूसरा क्या है जीएसटी आई जब से जीएसटी आई हमारे को पेमेंट की प्रॉब्लम रही नहीं बिल्कुल भी कि टोटल पेमेंट हमारा पहले क्या था 50 रुपये 100 रुपये हर व्यापारी कम बेचता था कोरियर चार्ज लेस कर लेता था आज पूरा का पूरा पैसा अगर 55 रुपीज़ है तो 55 रुपीज़ ऊपर लग के आता है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आई है पहले प्रोडक्शन का आज के प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा फर्क है आज किसी व्यापारी को घर में मैरिज भी करनी होती है तो स्पेशल सूरत चल के आता है यहाँ शॉपिंग करेंगे सस्ती मिलेगी पहले हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे हम आज ट्रेडर्स हैं आज हम लोग घर बैठे बैठे एक्सपोर्ट कर सकते हैं
1: टू जनरेशंस वन बिजनेस एंड द कॉन्ट्रास्ट इज स्ट्राइकिंग फॉर रवि द लेजर रिमेन्स पार्ट ऑफ द डेली रूटीन फॉर अक्षय द कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन आर इक्वली इम्पॉर्टेंट The shift is not just from paper to digital. It is a shift in the way a traditional textile business finds customers, takes orders, and competes in the industry.
3: We have to change a lot of things over the years because my dad started this business 45 years ago. And now I have been in this business for the last 15 years. So 15 years mein jo with time, jo generations itni fast hai, jo markets itne competitive hote ja rahe hain. Agar hum apne aap ko change nahi karenge, so there are around 1 lakh shops in Surat. This is Millennium Market, yahan pe 4200 shops hai. Agar humko yahan pe hum changes nahi layenge, to hum survive nahi kar payenge. Changes in sense, aaj सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो भी बिजनेसेस हैं अगर आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आपकी एजेंसी से कोई टाई अप नहीं है आप ऑनलाइन नहीं है तो विद इन अ स्पैन ऑफ 5 years आई डोंट थिंक आपका बिजनेस सर्वाइव भी कर पाएगा
1: द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हैज हैपेंड ऑन द फैक्ट्री फ्लोर वेयर द टेक्सटाइल जर्नी एक्चुअली बिगिंस एट दिस पावर लूम यूनिट वीविंग इज नो लॉन्गर एज लेबर इंटेंसिव एज इट वंस यूज्ड टू बी Machines have replaced human hands.
4: Changes में तो लेबर में changes बहुत आए पहले लेबर 4-5 मशीन हैंडल करते थे अभी 14 मशीन एक साथ में हैंडल करते हैं अभी क्या है लेबर ज्यादा ऑटोमेटिक मशीन को प्रीफर करते हैं इसलिए अभी लेबर का शिफ्टिंग ऑटोमेटिक मशीन के थोड़ा ज्यादा हुआ है सर क्वालिटी में अभी क्या है लोग अभी ज्यादा प्रीमियम कपड़े ज्यादा प्रीफर करते हैं लेकिन अभी इसके लिए उसके हिसाब से क्वालिटी कपड़ा अपना जो उसको क्वालिटी बोलते हैं उसमें सुधार लाना पड़ता है तो उसमें अपना प्रोडक्शन भी ज्यादा लगता है तो लोग अभी ज्यादा ऑटोमेटिक मशीन के दौर प्रीफर करते हैं
1: टेक्नोलॉजी हैज बिकम सेंट्रल टू सूरत टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन द चेंज इज विजिबल इन प्रोडक्टिविटी टू मशीन्स दैट वंस रिक्वायर्ड सेवरल वर्कर्स टू ऑपरेट आर इंक्रीजिंगली बीइंग हैंडल्ड बाय फ्यूअर मोर स्किल्ड ऑपरेटर्स
5: जो लूम्स थे वो कहीं ना कहीं अपनी एक उम्र को खो रहे थे, उसके बाद में युवा पीढ़ी का यहाँ पर आना हुआ, इस बिजनेस को संभालना हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रास्ते खुले, सरकार का सपोर्ट मिला, कई चीजों की सब्सिडी और फाइनेंस को इजी किया, तो उसके बाद में जो बाहर से इटली, जर्मनी, चाइना, यहां से जितना भी जो नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आई, तो एक रफ्तार उसने सूरत के कपड़े ने उन मशीनों के जरिए पहुंचाई है। और उसमें सबसे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो पुराने ख्यालात से सूरत में बना है और नया जोश दोनों साथ में जुड़ा, तो होश और जोश से नई टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। आज उसके अंदर रेपियर जेगार्ड, एयरजेट, वाटर जेट, डिजिटल प्रिंटिंग, इसके अलावा भी जैसे पॉलिस्टर बेस पर जो काम होता था उसके अलावा यहाँ पर विस्कोस का काम होने लगा, इसके अलावा नायलोन का काम होने लगा, बेम्बर का काम होने लगा। तो ये सब चीजें जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के दरवाजे खुले, तो एक रफ्तार और उसके अंदर एड ऑन हुई है। तो ऑटोमाइजेशन, ऑटोमेटिक मशीनों से कहीं ना कहीं सूरत ने और गति पकड़ी है। आज डोमेस्टिक मार्केट के अंदर लगभग 1.5 लाख करोड़ मीटर कपड़ा ईयरली यहां से डिस्पैच होता है, और इंपोर्ट की बात करें तो मशीनों की जो यहां पर आवक हुई है और मशीनों का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो उसने कहीं ना कहीं सूरत की दशा और दिशा दोनों को बदल के रख दिया।
1: For decades, Surat's strength was its ability to produce and distribute large volumes of synthetic and man-made fabrics across India. Now, that ambition is to reach the global markets. In 2025-26, Surat district recorded textile and ready-made garment exports worth around 10,478 crore rupees. India's overall textile, apparel and handicraft exports crossed 3.25 lakh crore rupees in the same financial year. For Surat, the challenge is to convert its enormous manufacturing and trading base into a bigger export opportunity. Surat's textile story is not only about machines. Inside homes, women continue to keep another part of this industry alive through meticulous handwork. Zari, Zardosi, mirror work, patchwork, and Ari embroidery turn ordinary fabric into intricate customized pieces. And for Jagruti Gabani, this has been a journey of 15 years.
6: World moti tiki, Zardosi, sab mein kar lete hai. Wo usko to sab chota chota kaam karna hai na, wo sab ko pasand hai, kyunki machine mein aisa kaam nahi hota hai, ye sirf haath se hi hota hai. इसीलिए वो कस्टमर बोलते हैं कि छोटा छोटा काम हमें चाहिए। हम 25 दिन लोग तो कंटिन्यू काम करते हैं, वह कोई कोई लोग कभी कभी काम करते हैं जिसका टाइम मिलते हैं इससे।
1: The next challenge for Surat is perhaps its biggest yet. Moving up the textile value chain. The city's strength has always been volume. But the future will demand much more. Garments, fashion, technical textiles, premium products, brands and exports. India's Production Linked Incentive or PLI scheme for textiles has approved 170 companies nationally, covering man-made fiber apparel, MMF fabrics and technical textiles. The PLI scheme is an Indian government program that gives financial rewards to companies based on their increased sales of products made inside India. Gujarat has 46 approved companies under the PLI scheme. And just beyond Surat, another piece of this future is taking shape. Inspired by the 5F vision of the Prime Minister, farm to fiber, to fabric, to fashion, to foreign, Gujarat is setting up Pradhan Mantri Mitra Textile Park at Vansi Village in Navsari district. Spread across 1,142 acres, the project is planned as an integrated textile and apparel ecosystem and has an estimated cost of around 2,398 crore rupees. The park is expected to bring different stages of the value chain closer together, from manufacturing and processing to garments, logistics and supporting infrastructure. It is an attempt to move from fragmented production towards a more integrated textile ecosystem, transitioning Surat from a raw fabric supplier into a high-value global garment and textile export powerhouse.
0: Over the past several decades, Surat has kept weaving to changing markets, changing technology and changing times. At this point, Hasati stands at another turning point. The challenge is no longer simply to make more, but to create more value. And perhaps this is the next big story written in Surat's textile market. With video journalist Siddesh, this is Disha reporting from Surat, Gujarat for Beyond World is One.

0: यार लोन भूल गया मैरी
1: सजेस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
3: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
4: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
5: द वर्ल्ड इज चेंजिंग द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन. स्मॉल
1: स्मॉल, अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग. अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: In West Asia, every move shifts the world's balance. Wars, ceasefires, alliances. Power never stands still. Because what happens in West Asia never stays in West Asia. This is the West Asia Post.